0: चल गए रहा
1: क्या बोले
0: चल गए चल गए चल गए
2: Beda masa, satu rasa, sukun spesial baru.